जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

जय हिंद। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये स्पेशल कार्यक्रम है। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे पुरखों की, यानी हमारे पितरों की। दोस्तों, 16 दिन के ये स्पेशल जो दिन होते हैं, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा होती है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यानी पितृ पक्ष को मनाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम भी ये बनते हैं। क्या होते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे।

स्वाभाविक है, कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद हमारा जीवन आरंभ होता है और ऐसे समय पर कवि ने एक चेतावनी दी है, एक महान शिक्षा दी है, इसकी ओर ध्यान दें।

ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं, कुछ और रागों की इसमें छाया है, प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो है राग देश।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर मैं हूँ वास्तु कृष्ण। पितृपक्ष चल रहे हैं दोस्तों, मृत्यु के बाद भी पितरों से संबंध क्या है हमारा? पूर्वजों की मृत्यु के साथ उनका संबंध परिजनों से समाप्त नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि मृत्यु के बाद सारे संबंध खत्म हो गए, सारे रिश्ते खत्म हो

ले अपने पितरों का पूजन और उन्हें याद करके उनका नमन किया जाता है। शादी हो, बच्चे का मुंडन हो, कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हो, तब भी हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए। आप अपनी परंपराओं में, हमारी सभ्यता में देखेंगे कि कोई भी छोटे से बड़ा कार्य होता हो, हम अपने पितरों को जरूर याद करते हैं। शादी होने पर, बच्चे का जन्म होने पर अपने पितरों के नाम से भोजन के साथ कपड़े इत्यादि निकालते हैं, उनको किसी को दान में देते हैं। तो ये हमारी परंपराओं में है, अपने DNA के साथ, अपने पूर्वजों के साथ एक जुड़ाव है, ये श्रद्धा है। और इस श्रद्धा को वैसे हमें पूरे साल अपनाना चाहिए। ये 16 वो दिन स्पेशल इसलिए आते हैं कि अगर भूलवश कभी हमको याद नहीं रहा तो हम इन दिनों में अपनी भूल को सुधार लें। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में हमारे पूर्वज अपने बच्चों को, अपने परिवारों को देखने के लिए वापस इस धरती पर आते हैं, अपने परिवारों में आते हैं। और जब वो अपने बच्चों को अपने नाम से भोजन इत्यादि पूजा करना ये सब देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और अभिभूत होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, और उस आशीर्वाद से जिंदगी में ग्रोथ या तरक्की आती है।

जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मैं वास्तु कृष्णा हूं, सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान का क्या महत्व है? दृश्य अदृश्य जगत, यानी दृश्य जगत जो हम देख पा रहे हैं, अदृश्य जगत जो हम नहीं देख पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं, उन शक्तियों को, अपने पितरों को, या जो भी शक्तियां जो भी इस अलौकिक जगत में आपको देखने के लिए मिलती है, वैज्ञानिक रहस्यों को समझकर ऋषि मुनियों ने अब से हजारों साल पहले अश्विनी श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के स्मरण यानी उन्हें याद करने के लिए उनके तर्पण और श्रद्धा अर्पण की परंपरा को स्थापित किया, जिसे विधि विधान का पालन करके व्यक्ति अपने पितरों की मुक्ति सदगति के साथ घर परिवार का कल्याण कर सकता है। जब अंतर्मन को एकाग्र करके दिवंगत पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य किया जाता है, तो ये बाहरी क्रियाएं आंतरिक भाव जगत से जुड़कर पितरों तक पहुंच जाती हैं।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, श्राद्ध की बात करते हैं तो हर परिवार में अपने अपने हिसाब से हम श्राद्ध पूजन करते हैं। हर परिवार की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ तरीके हैं, सब अपने अपने तरह से करते हैं। लेकिन कुछ मूल चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पिंड चावल का भी बनता है, आटे का भी बनता है, उसमें सफेद तिल और काले तिल भी मिलाए जाते हैं, मीठा भी मिलाया जाता है। पिंड को बनाकर उसका दान करना, कुछ जगहों पर चींटियों को भोजन कराना या उनको जिमाना, गाय को या कोए को या कुत्तों को भोजन कराना, किसी भिखारी को या गरीब को भोजन कराना, दान इत्यादि करना, ये सब कुछ मूल बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। इसकी अगर डिटेल जानना चाहें तो आप गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में पता चलता है कि एक परिवार की क्या क्या जिम्मेदारी है अपने पूर्वजों या पितरों के प्रति। श्राद्ध में भोजन का एक बड़ा हिस्सा पंचबलि यानी गाय, कुत्ता, कोवा, चींटी, देव और अतिथि के रूप में प्रकृति के अन्य जीवों को अर्पित किया जाता है। इसे हम पंचबलि के नाम से जानते हैं, जिसमें आप समझे कि पांच जीव हो जाते हैं, पंचबलि उन्हीं को कहा गया है, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देव यानी भगवान, जिनको हम भोग लगाते हैं। स्थूल भोजन को जब हम अग्नि या होम में प्रवाहित करते हैं या चढ़ाते हैं, यानी कि जैसे आपने होम किया, हवन किया, कोई पूजा की, जब हम उसमें लौंग चढ़ाते हैं या कोई पूजन की सामग्री चढ़ाते हैं, ऐसे ही भोजन को भी अंगार पर या आग पर रखते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है उसको लेने के लिए आते हैं पितर, उसी माध्यम से ये पितरों तक पहुंचता है। जल से तर्पण किया जाता है, सूक्ष्म तत्वों में बदला जाता है तो वो वाष्प और ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार सूक्ष्म सत्ताएं स्थूल भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, वे केवल उसकी गंध, ऊर्जा और भाव, इन्हीं तरंगों से पोषण प्राप्त करती हैं। तो कल को अगर कोई आपसे ये कहता है कि यहां क्या अब आपके जो पूर्वज हैं या जो पितर हैं वो इस भोजन को खाने के लिए आते हैं, भला इसको वो कैसे खा सकते हैं, तो जब हम अर्पण कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, जैसे कि जल तर्पण करते हैं या पूजा में अंगार पर, आंच पर जैसे ही हम भोजन को डालते हैं, उसकी जो गंध उड़ती है और ऊर्जा में जो रूपांतरण आता है उसी को वो स्वीकार करते हैं।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee, you gonna love it. Address, Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है सुप्रभातम। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में, पितृ पक्षों के बारे में। 16 दिन होते हैं, बहुत ही स्पेशल दिन होते हैं। अगर कई दिन गुजर भी जाते हैं और हम भूल जाते हैं तो वैसे तो आपको रोज ही अपने पितरों को याद करना चाहिए। अगर आपको जीवन में तरक्की या ग्रोथ चाहिए, आपको लगता है परिवार में लगातार हानि हो रही है, आर्थिक तंगी आ रही है या घर में खुशियों की कमी है, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं पितृ गड़बड़ है, यानी पितरों के पास शक्ति नहीं है कि वो आपको आशीर्वाद दे पाए। इसीलिए अपने पितरों को पूजने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए बताया जाता है कि हमें अपने पितरों का पूजन, तर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। संकल्प और श्रद्धा से एक ऊर्जा जुड़ी होती है दोस्तों, जिसका हमको मालूम होना चाहिए। दिवंगत जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो अब हमको छोड़कर चले गए हैं, इस संसार में नहीं है, वो आपके पिता, माता, दादा, दादी, कोई भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वज हो।

सकते हैं, उनके प्रति एक दृढ़ संकल्प और अविचलित श्रद्धा होती है। एक ऐसी श्रद्धा जो किसी भी बात से, किसी भी टोका टाकी से विचलित ना हो सके, खत्म ना हो सके, कोई कुछ भी बोले। एक केंद्रित मानसिक फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करती है, एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और ये ऊर्जा भगवान के बनाए संसार में, इस अंतरिक्ष में विलीन चेतना तक विचार से पहुंच जाती है। वैदिक विज्ञान के गूढ़ रहस्य या सिद्धांत को समझने वाले लोग बताते हैं इस बात को। देखिए, कठिनाई ना हो इसलिए व्रत, तीज, त्योहार, श्राद्ध पक्ष, इन सब में सरल विधान बनाए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, ताकि हर व्यक्ति इनके उपयोग से लाभान्वित हो सके। जो भी हम करते हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, और ये ऊर्जाएं वापस आपके पास आशीर्वाद के रूप में लौट कर आती है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, और क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, वास्तु का भी ध्यान हमको देना है। पितृ देंगे सुख समृद्धि आपको जब आप घर में अपने पितरों का ध्यान रखेंगे। श्राद्ध के दौरान दिशा, पूजा का स्थल, पितरों की तस्वीर, ये सब रखने के भी कुछ वास्तु के द्वारा बताए गए नियम है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ वो संस्कार जिससे पितर संतुष्टि प्राप्त करते हैं, और मान्यता है कि पितर या हमारे पूर्वज ही हमें जीवन में आई विपत्तियों में, विपरीत परिस्थितियों में जो हमको ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, ज्ञान देते हैं, और उन परिस्थितियों से उबारने में मदद करते हैं। उनका मार्गदर्शन कई बार अंतरात्मा की आवाज या अचानक मिलने वाली सही समझ के रूप में हम तक पहुंचता है। ऐसे ही जीवन में अचानक बेवजह कुछ नहीं होता। जब हम अपने पितरों का ध्यान करते हैं और उनके लिए हम पूजा अर्चना करते रहते, पिंडदान तर्पण इत्यादि करते हैं, तो वो हमको रास्ता जरूर दिखाते हैं।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सब

से जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है। और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात,

0: अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्ण और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई। और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर महत्वपूर्ण, मतलब आप समझे, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है, मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार है पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले, इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुबह भारती, आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाई आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कई। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, परिवार, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती हैं। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई है। ये मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहाँ पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सा सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें, उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने

सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों, जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा जरूरी है। विकास केवल लोगों की संख्या से नहीं होता, विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, बच्चे सुरक्षित और पोषित हों, महिलाओं को सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, पुरुष परिवार की जिम्मेदारी में बराबर भागीदारी निभाए, युवाओं को अपने भविष्य के लिए सही अवसर मिले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है जनसंख्या से। परिवार के प्रति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पति पत्नी परिवार से जुड़े फैसले मिलकर साथ में ले, बच्चे और उनके बीच का उचित अंतर रखना, कितने बच्चे होने चाहिए, किसी दूसरे के प्रेशर में आकर बच्चे पैदा नहीं करने, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई दादी नानी, कोई मोहल्ला, कोई पड़ोसी, कोई यार रिश्तेदार बोले कि नहीं बच्चे और पैदा करो तो ये बात ठीक नहीं है। इसका अधिकार केवल आपका है, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है, ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की। हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा वातावरण देंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों, बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच ना कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए। अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव बनेगा। इसी संदेश के साथ आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर सही सलाह के साथ लीजिए। सेहत से ही लाभ कई में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, वंदे मातरम।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय हिंद वंदे मातरम सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। आप सुन रहे हैं, मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, यह है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से चुलबुले बच्चे, ये क्यूटी पाई आपके, जिन्हें आप कभी लड्डू कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, तो कभी चीकू भी कहकर पुकारते होंगे, है ना। उस नन्ही सी जिंदगी की जो जन्म लेते ही हमारी पूरी दुनिया बदल देता है, उसी की बात करेंगे आज हम। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में खुशियां आती हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, सवाल यह है क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है, क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है, क्या उसे पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है, क्या उसकी आंखें और कान ठीक हैं, क्या उसका शरीर मजबूत हो रहा है, क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से सीख और समझ रहा है, और क्या उसकी मां भी स्वस्थ है। क्योंकि याद रखिए, स्वस्थ बच्चा बनाने की शुरुआत मां के स्वास्थ्य से होती है। तो आइए आज जन्म से लेकर लगभग 10 साल की उम्र तक के बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं सेहत सही लाभ कई में।
2: सेहत सही।

वेलकम आपका एक बार फिर से सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति। दोस्तों, क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है? क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है? पोषण मिल रहा है? आंख, कान, पैर, हाथ सब ठीक है, मजबूत है? क्या अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है? ये सब जिम्मेदारियां एक पूरे परिवार की होती है ठीक समय पर पता करना। साथ ही साथ ये भी कि उसकी माँ भी क्या स्वस्थ है भी या नहीं। बच्चे के जन्म के समय की बात करते हैं। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद के जो टाइम होते हैं, जो दिन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात बच्चे को जन्म के बाद गर्म रखना, माँ और बच्चे का जो त्वचा से त्वचा का संपर्क है वो बनाना, जल्दी स्तनपान शुरू कराना, संक्रमण से बचाव और बच्चे की सांस और सामान्य स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। WHO नवजात की आवश्यक देखभाल में इन बातों को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद केवल घर ले आना ही पर्याप्त नहीं होता, माँ और बच्चे दोनों की प्रसव के बाद जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है माँ के दूध की। दोस्तों, बच्चे के जीवन के शुरुआती महीनों में माँ का दूध उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषण होता है। WHO और यूनिसेफ की सिफारिश है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद सुरक्षित और पर्याप्त पूरक आहार शुरू किया जा सकता है और स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। इसीलिए नवजात को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आवश्यक जांच पड़ताल के पानी, शहद या दूसरी चीजें मत चटाइए। इस तरह की परंपराओं से बचना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा घर पर पहली बार आता है तो मोहल्ले के कुछ लोग आकर ऐसी बातें बता देते हैं कि बच्चे को ये चटा दो, वो खिला दो। ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, डॉक्टर की ही सलाह माननी चाहिए। और हाँ, अगर माँ को स्तनपान कराने में परेशानी हो रही है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चा बार बार उल्टी करता है, तो स्वास्थ्य कर्मी से या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अब बात करेंगे हम माँ की। हम अक्सर बच्चे की चिंता में माँ को भूल बैठते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के शरीर को आराम भी चाहिए, पौष्टिक भोजन भी, पर्याप्त पानी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को लगातार अत्यधिक कमजोरी हो, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, बहुत तेज सिर दर्द या दूसरी कोई गंभीर समस्या नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी, माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद थकान और भावनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ लंबे समय तक बहुत उदास रहे, किसी काम में मन न लगे, अत्यधिक चिंता रहे या खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए, तो इसे छिपाना नहीं चाहिए। परिवार को उसका साथ देना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। WHO भी प्रसव के बाद माँ और परिवार को जानकारी, सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के महत्व पर जोर देता है। अब ये जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है कि जन्म के बाद सिर्फ बच्चे के चक्कर में नहीं लगे रहना, उसकी माँ का भी विशेष ध्यान रखना। मानसिक बदलाव भी होंगे, है ना, स्ट्रेस भी हो सकता है एक माँ को, तनाव भी हो सकता है, कई बीमारियां भी घर कर सकती हैं, तो माँ का भी उतना ही ध्यान रखना जितना बच्चे का रखना है।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ गई में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यह है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के जन्म से लेकर तकरीबन 9-10 साल की उम्र होने तक उसका ध्यान किस प्रकार रखें, और बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे जरूरी हो जाता है माँ के सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये तो आपको पता ही होता है। अब नवजात बच्चे में किन किन बातों पर नजर हमको रखनी है इसकी बात करते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत ज्यादा सुस्त है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बहुत तेज या असामान्य सांसें चल रही हैं, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चे का रंग असामान्य रूप से पीला या नीला दिखाई दे रहा है, तो इंतजार मत कीजिए। नवजात बच्चे में बीमारी तेजी से गंभीर हो सकती है। ऐसे संकेतों में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास जाकर संपर्क जरूर करना चाहिए। अब बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब क्या करना है? दोस्तों, अब शुरू होती है एक नई यात्रा। 6 महीने के बाद सिर्फ दूध बच्चे की बढ़ती जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं रहता। 6 महीने के बाद इसीलिए उम्र के अनुसार पूरक आहार शुरू करना चाहिए। जैसे कि स्तनपान तो जारी रखना ही है, बच्चे के खाने पीने में धीरे धीरे अलग अलग पौष्टिक चीजें शामिल कीजिए। दाल, खिचड़ी, सब्जियां, फल, हल्के फुल्के अनाज, अंडा, दूध या अन्य उपलब्ध जो भी आपके परिवार में चलता है पौष्टिक खाद्य पदार्थ। और परिवार की जो स्थानीय या पौष्टिक चीजें होती है, ऐसा होता ना कि हर किसी के परिवार में अलग खान पान चलता है या हर स्थान पर हर जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। ध्यान रखिए, परिवार में एक तरह का भोजन बनता है, लेकिन एक परिवार में नवजात बच्चा भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, सबका भोजन एक नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहती, उनका भोजन अलग होना चाहिए, नौजवानों का अलग होना चाहिए, किशोरों का अलग होना चाहिए और नवजात शिशुओं का, बच्चों का अलग भोजन होना ही चाहिए। यह नहीं है कि आज आपने अपने घर में कुछ बना दिया तो बच्चे को भी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी वही चटाते रहे। जी नहीं, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि छोटे नवजात बच्चों को आपको क्या खिलाना है। उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए पोषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार की स्थानीय जो भी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें हैं जो आप खाते हैं अपने घरों में, वो खिलाएं, उसी में से ढूंढ लें कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चे को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं देना है, उसका पोषण का ध्यान रखना है। अब आती है एनीमिया यानी खून की कमी की बात। बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। बच्चा जल्दी थक जाए, कमजोर दिखाई दे, खेलने में रुचि न दिखाए, उसकी त्वचा या आंखों के अंदर का हिस्सा ज्यादा पीला दिखाई दे या उसका विकास अपेक्षित गति से न हो रहा हो, तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के बच्चे को आयरन की दवा खुद से नहीं देनी है। जरूरत के अनुसार डॉक्टर जांच और उपचार तय करेंगे, उसके बाद ही कोई दवाई खिलाई जाएगी। अब बात सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी है। दोस्तों, बच्चे का स्वस्थ विकास केवल वजन बढ़ने का नहीं होता है। बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब बोलना शुरू करता है, अपनी बात कैसे समझाता है, दूसरों से कैसे जुड़ता है, कैसे खेलता है, कैसे चीजों को समझता है, ये सब उसके विकास का हिस्सा है। हर बच्चे के विकास की गति थोड़ी अलग होती है, इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा कि फला बच्चा तो, उनका बच्चा तो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो गया, बहुत जल्दी खड़ा होना शुरू हो गया, या वो ऐसे करता है वैसे करता है। हर बच्चा बिल्कुल अलग है, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार लगातार पीछे ही खिसक रहा हो या पहले से आती कोई क्षमता खो रहा हो, तो उसे इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। समय पर जांच और शुरुआती सहायता बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। WHO के अनुसार शुरुआती वर्षों में बच्चे को अच्छा पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, प्यार, देखभाल और सीखने के अवसर मिलना उसके विकास की बुनियाद होते हैं। इसीलिए बच्चे को सिर्फ मोबाइल पकड़ा देना सीखना नहीं होता। दोस्तों, उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए, वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, वो सब सुनिए, उसकी बातों को सुनिए और फिर उसे कुछ कहानियां सुनाइए, उसे अपनी बातें बताइए, उसके साथ बातें कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ चित्र भी बनाइए, अगर वो कोई मस्ती करता है तो अपने बच्चों के साथ मस्ती भी कीजिए, गाने उसको सुनाइए, कविता सुनाइए, लोरी सुनाइए, और हाँ अगर वो कुछ आपको सुनाना चाहता है तो सुनिए भी, और उसे सुरक्षित वातावरण में चीजें खोजने और सीखने का मौका दीजिए। बच्चे का दिमाग सिर्फ किताबों से नहीं बातचीत और अनुभव से भी विकसित होता है। अब 2 से 5 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है, इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। इस समय पोषण के साथ साथ नींद, शारीरिक गतिविधि, खेल, भाषा और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है तो आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, सारा दिन वो मोबाइल ही देखता रहे, ये जितने कार्टून और जो बच्चों की वीडियोज होती है वही देखता रहे, उससे दूर रखना है। बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, अगर जरूरत पड़े आप खुद उसके साथ खेलिए, उसके खेलने के सामान लेकर आइए, बहुत ज्यादा मोबाइल मत देखने दीजिए, बच्चे को हर समय मोबाइल या टीवी के सामने मत बैठने दीजिए, इसके बजाय उसे उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसको कहानियां सुनाइए, परिवार के साथ खेलने का मौका दीजिए, दूसरे बच्चों को साथ खेलने का मौका दीजिए, हाथ धोने की आदत डालिए, साफ पानी पिलाने की आदत डालिए, साफ और सुरक्षित खाना कैसे खाना है ये उसको बताइए, शौचालय कैसे यूज करना है, हाथों को कैसे धोना है ये सब उसको सिखाइए, और हाँ टीकाकरण का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, टीके की कोई खुराक छूट तो नहीं गई है, स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर आगे की पूरी योजना तय करिए।
2: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

प्रस्तुति। जी हाँ, यह सेहत से ही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हमने बात की है यहाँ पर कि अपने नवजात बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तकरीबन पैदा होने से लेकर 9-10 साल की उम्र तक कैसे कैसे हमको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके भी कोई विचार है तो हमारा नंबर है 9639012111 पर, इस पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कुछ भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये खास प्रस्तुति है स्मार्ट एनजीओ की।

0: ऐसे ही प्यार से, जैसे ये गाना भी आपने सुना, ऐसे ही प्यार से अपने बच्चों से बात कीजिए। दोस्तों हमने बात की पैदा होने से लेकर तकरीबन 5 साल तक हमारे बच्चों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का ध्यान कैसे हमको रखना है। दोस्तों ये वो उम्र है जब माता पिता को सिर्फ पढ़ाई के नंबर नहीं देखने चाहिए। बच्चा स्कूल में कैसा महसूस करता है, उसकी नजर साफ है या नहीं, उसे सुनने में कोई परेशानी तो नहीं, वो बार बार सिर दर्द की शिकायत तो नहीं करता, अपनी क्लास में ध्यान लगाने में लगातार कठिनाई तो नहीं हो रही, बच्चा बहुत जल्दी थक तो नहीं जा रहा, बार बार बीमार तो नहीं पड़ता, उसका वजन और लंबाई उसकी उम्र के अनुसार लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी क्या बच्चा खुश है। अगर बच्चा लगातार चुप रहता है, डरता है, स्कूल जाने से बचता है, अचानक पढ़ाई में गिरावट आती है, व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई देता है, तो केवल डांटने के बजाय उससे बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर उसके टीचर से या डॉक्टर से भी मदद लीजिए। और सबसे खास बात दोस्तों हमारी बेटियों के बारे में, बेटा हो या बेटी वैसे बात बराबर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है।
6: सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
7: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार।
8: द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
9: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आर जीवंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:11 एक अक्टूबर आज की तारीख, और दोस्तों कैलेंडर का मंथ जो है वो फ्लिप करने का जो मौका है वो आ गया है। आज ही के दिन सितंबर में से बाहर निकलिए और अक्टूबर में जरा एंटर कर जाइए और नए ड्रीम्स नए गोल्स को आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। वहीं चलिए गुड वाली मॉर्निंग गुड वाली वाइब। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है बात कर लेते हैं। शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं आपके भीतर के दृष्टिकोण में होती है। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में ही होती है। दोस्तों हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, जब नौकरी रिश्ते या आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगा तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन कभी भी पूरी तरीके से समस्याओं से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि दूसरों का व्यवहार, मौसम, अचानक आई रुकावटें हमारे वश में है ही नहीं। जब हम अनियंत्रित चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तो केवल तनाव और निराशा ही हमारे हाथ लगती है। इसीलिए घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। और वही अंतर है आपकी मानसिक शांति जो जिस पर डिपेंडेंट होती है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो तुरंत गुस्सा या हताश आपको नहीं होना है। इसके बजाय आप रुक करके थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्या इस पर मेरी परेशान प्रतिक्रिया से स्थिति सुधरेगी या नहीं, ये सवाल आप जरूर कीजिए, क्योंकि परेशान होना किसी बात के लिए सल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान होने के बावजूद उसके गहराइयों में शांति होती है, बिल्कुल वैसे ही एक परिपक्व व्यक्ति बाहर के शोर और उथल पुथल के बीच भी अपने मन को शांत रखना सीख लेता है और सीखता है। तो इसीलिए जो चीजें आपके वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखें और अपनी ऊर्जा केवल उन बातों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। वहीं किसी भी मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत गुस्सा या पैनिक करने के बजाय 5 सेकंड का ब्रेक लें और गहरी सांस आप लें। वहीं दिन में कम से कम एक बार उन चीज़ों का ध्यान करें जो आपको लगता है कि आपके जीवन में अच्छी हैं। इसके लिए ध्यान समस्याओं से हट करके समाधान और सकारात्मक पर जाता है, इसलिए ये टेक्निक हमें अपनानी चाहिए। बाहरी परिस्थितियां केवल हवा के झोंके की तरह होती हैं दोस्तों। आप अपने मन के नाव को किस दिशा में लेकर जाते हैं ये पूरी तरीके से आपके ही हाथ में है। फिलहाल मेरे हाथ में क्या है बहुत ही प्यारा सा गाना, चलिए इस गाने को एंजॉय करेंगे। बाकी आपको कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First Always First. और दोस्तों 9:31 हो गई हैं और अभी हवस मूवी का हमने काफ़ी प्यारा सा गाना इन्जॉय किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम. और इसी के साथ चलिए दोस्तों, क्योंकि आज की तारीख है 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर क्यों हो जाती है खास, इसके बारे में बात कर लेते हैं. आपको बता दूं कि साल 1854 की बात है कि भारत में डाक टिकट का शुभारंभ किया गया था. भारत में पहली बार आधिकारिक डाक टिकट की बिक्री आज ही के दिन शुरू हुई थी 1854 में. वहीं 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी IAM की स्थापना की गई थी. देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी ने काम करना शुरू किया था 1932 1 अक्टूबर को. वहीं आपको बता दूं, माओ त्से तुंग ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर से नए कम्युनिस्ट चीन की स्थापना की घोषणा की थी 1949 में. और वहीं भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य के रूप में आंध्र राज्य का गठन हुआ था 1953 में. वहीं आपको बताऊं, भारत सरकार ने वजन और माप के लिए मीट्रिक प्रणाली, किलोग्राम मीटर जैसी चीज़ों की शुरुआत की थी 1958 में. और नाइजीरिया ने ब्रिटेन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1960 में. वहीं भारत में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए बढ़ाकर के 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई थी 1978 में. तो इसलिए कुछ हो जाता है आज का दिन खास. बाकी और भी चीज़ें हैं जो आज के दिन को और भी ज़्यादा खास बनाती हैं. बाकी आपके घर में कुछ खास सम खास है तो बिल्कुल आप मुझसे साझा कर सकते हैं. नंबर बहुत सिंपल सा है 9639012111. चलिए ये अपकमिंग गाना आपसे कुछ कहना चाहता है तो इस गाने के सुन लेते हैं. उसके बाद आई बैक टू यू विद बहुत सारी बातें. कहीं मत जाइएगा, यूँ ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट.

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यू ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
3: अरे अरे अरे, रुको, क्या कर रही हो?
2: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
3: रात का बासी पानी?
2: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
3: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
2: तो फिर कैसे किया जाए?
3: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
4: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
5: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, RJ वंशी के साथ।
2: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 9:49 हो गए हैं। और दोस्तों, अभी हमने चांदनी मूवी का काफ़ी अच्छा सा गाना इंजॉय किया। बाकी वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज के दिन क्या हो जाता है खास, और क्या कहता है आज का इतिहास। चलिए इसके बारे में अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के दिन आज क्या क्या हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइजीरिया ने ब्रिटेन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1960 में। और वहीं भारत में विवाह की मिनिमम जो एज है लड़कियों के लिए बढ़ा करके 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की गई थी 1978 में। BSNL का गठन हुआ था 2000 में। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कर इसे पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी। वहीं आपको बताऊं कि आज के दिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, महान लोग, जो इस धरती पर आए, और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकती दोस्तों।

इस लिंक के बाद मैं जरूर आपकी फरमाइशों को पूरा करूंगी। फिलहाल आपको बताऊं कि प्रसिद्ध समाज सेविका, होम रूल लीग के संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट का आज के दिन जन्म हुआ था 1847 में। वहीं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो रहे लियाकत अली खां, उनका जन्म हुआ था 1895 में आज ही के दिन। हिंदी सिनेमा के प्रख्यात गीतकार और उर्दू शायर मजरूह सुल्तानपुरी, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1919 में। वहीं अमेरिका के 39th राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कॉर्टर का जन्म भी आज ही के दिन 1924 में हुआ था। और तमिल और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेशन का जन्म भी आज ही के दिन 1928 में हुआ था। और भारत के 14वें राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद का जन्म भी आज ही के दिन 1945 में हुआ था। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल 9639012111 लगा सकते हैं और इस पर मुझे अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, साथ ही साथ अपने दिल की बात मुझे बता सकते हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूँ ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। The Mars Resorts, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
4: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 10:10 हो गए हैं दोस्तों, और 10वां महीना भी शुरू हो गया है, यानी कि आज है तारीख 1 अक्टूबर। और आज के बारे में आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आज के दिन आखिर क्या हो जाता है खासम खास। जैसे कि अभी हमने बात की कि 21 आज 1 अक्टूबर को कई ऐसे लोग जन्मे जो काफी फेमस रहे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी रहे जो हमें आज अलविदा कह करके चले गए। जैसे कि सिख धर्म के तीसरे गुरु का ज्योति जोत समाना आज ही के दिन किया गया था, गुरु अमरदास जी का आज ही निधन हुआ था 1574 में। और वहीं हिंदी और बंगाली सिनेमा के महान संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन का निधन भी आज ही के दिन 1975 में हुआ था। और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का निधन भी आज ही के दिन 1789 में हुआ था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। और नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे भी आज एक दिन मनाया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के बारे में भी जानते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल कॉफी डे भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ देर बाद हम बात करेंगे नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के बारे में, बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपके क्या सुझाव हैं आप मुझे जरूर बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी। फिलहाल चांदनी मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को इंजॉय करेंगे। इसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 10:29 हो गई है, 1 अक्टूबर आज की तारीख है। और आज के दिन मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर 1990 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था और 1 अक्टूबर 1991 को पहला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य जो है समाज में बुजुर्गों की योगदान, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन और संस्कृति की रक्षा को सम्मान देना था। वहीं बढ़ती उम्र के साथ आने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाना। और अगर बात करें आगे तो मैं आपको बता दूं, वृद्धजनों के अधिकारों, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और समाज को प्रेरित करना इसका उद्देश्य हो जाता है। आधुनिक समय में निकले फैमिलीज यानी कि एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बुजुर्गों में अकेलापन और उपेक्षा की समस्या बढ़ रही है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि बुजुर्ग समाज की धरोहर है, बोझ नहीं है। तो इस बात पर आप जरूर विचार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में, आपके साथ में आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं या नहीं रहते। फिलहाल चलिए ये गाना हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: हाय एवरीवन, आई एम कपिल घोरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। Nation first, always first.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 10:44 हो गए हैं मेरे दोस्तों, और फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ आज है क्या खासम खास। देखिए, आज है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे भी, यस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान भी आज ही के दिन मनाया जाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में इस दिवस की शुरुआत 1 अक्टूबर 1975 में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी यानी कि ISBT द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी नींव रखी थी डॉक्टर जे जॉली और श्रीमती स्वरूप कृष्ण ने। वहीं आपको बता दूं कि इसके उद्देश्य जो हैं वो लोगों को बिना किसी आर्थिक स्वार्थ के स्वेच्छा से रक्तदान यानी कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं आपातकालीन स्थितियों जैसे कि दुर्घटनाएं, प्रसव और गंभीर बीमारियों जैसे कि थैलेसीमिया, कैंसर के लिए अस्पतालों में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। वहीं रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों और डर को दूर करना। एक यूनिट रक्त से कम 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत में हर साल लाखों यूनिट रक्त की कमी होती है, जिसे केवल स्वैच्छिक रक्तदान अभियानों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों, अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के बारे में, और फिलहाल मैं आपसे कहूँगी कि हलचल मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए इस गाने को एंजॉय करेंगे। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर। आप चाहे तो हमारे सोशल हैंडल्स पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप जा सकते हैं मेटा पर, आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप जा सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप जा सकते हैं ट्विटर पर भी यानी कि एक्स पर। चारों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जाना होगा आजाद हिंद रेडियो, वाया आजाद हिंद रेडियो से आप आरजे वंशी को अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें मैं आपसे करती ही रहूंगी समय समय पर, लेकिन हलचल मूवी का काफी बेहतरीन सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद अनदर कॉफी।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम पहले

0: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ
1: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम शरद है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं आरजे वंशी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका रेडियो प्रोग्राम आजाद हिंद रेडियो डेली सुनता हूँ। मुझे उनका कंटेंट काफी पसंद है। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे काफी अच्छी वाइब्स आती है, काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। मैं उनसे अपने थॉट्स डिस्कस करता हूँ, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आता है। मुझे काफी अच्छा लगता है उनसे बात करके, मुझे उनकी आवाज काफी अच्छी लगती है। कई बार उनसे बात करके ऐसा ही फीलिंग आती है जैसे आप अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हैं। मैं काफी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं रहने वाला मेरठ का ही हूँ। उनसे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी सुनिए उनका प्रोग्राम, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले एक बार उनसे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं?
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूं। 11:11 हो गए हैं, 1 अक्टूबर आज की तारीख है, और इसी के साथ दोस्तों आज है गुरुवार। और अभी जो हमने गाना एंजॉय किया, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, बिल्कुल इस गाने की फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से। जॉन टिकेस्टो, रोजी टिकेस्टो, पॉल टिकेस्टो के साथ फिलिस टिकेस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस गाने को उन्होंने ही फरमाया था। तो चलिए, हमने ये गाना इंजॉय भी किया, प्ले भी किया, और वाकई ये गाना काफ़ी खूबसूरत सा, गोरा और काला फिल्म का ये गाना। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार हेड़ा गाँव से, सहारनपुर से ही हमारे अनदर लिसनर्स सैयद मशरू, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सद्दाम भी। इनका कहना है कि इन्हें भी एक गाना सुनना है जो कि राजा मूवी का है, फूल मांगो ना बहार मांगो, मैं तो सचिन तेरा प्यार मांगू। बिल्कुल इस गाने को हम ज़रूर इंजॉय करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है या किसी गाने की फरमाइश करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। इस नंबर पर कॉल मैसेज के साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी, और बहुत ही आसानी से मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगी और आप भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल चलिए, पहुंचा रही हूं आपके पास तक ये रिक्वेस्टेड गाना। इस गाने को इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हेलो आजाद हिंद रेडियो, राम राम। आम तो आजाद हिंद रेडियो अमे घणा लांबा समय थी सांभळे छे, अन जे एमाय आज जे वंशी बेन नो जे कार्यक्रम आवे छे बपोरे 11 वाग्या थी 1 वाग्या सुधी, ई कार्यक्रम नी तो वात ज एक अलग छे। एमा खूब मजा आवे छे अने साथे साथे आपणने पोताना पसंदगीना हिंदी सॉन्ग सांभळवानी खूब मजा आवे छे, अने साथे खास साथे जे सुरक्षानी जे सलामतीनी अने जे घरगथ्थु उपचार होय जे सर्दी खांसी आवी नानी नानी बाबतोनु वंशी बेन खूब नानी नानी वातोथी अमने अपडेट आपता रहे छे। ते बदल वंशी बेन नो हूँ दिलथी खूब खूब आभार मानु छु। अने गुजरात मा घणा बधा आजादी रेडियोना श्रोता मित्रो छे अने वंशी बेन नी वातो खूब सरस होय छे। नाना पाळियाद थी ने जसमतभाई तालुको जिलो बोटाद गुजरात, आजाद हिंद रेडियो, खुश रहो आजाद मजामा रहो, नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 11:27 हो गए हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर आज की तारीख है और अभी हमने मैंने प्यार किया मूवी का काफ़ी बेहतरीन सा गाना इंजॉय किया। SP बाला सुब्रमण्यम जी का ये गाना, ओ माय गॉड, इतना प्यारा इतना बेहतरीन सा गाना कोई कैसे हो सकता है, इज़न्ट इट? आपको लगता है कि जब हम इनके गाने सुनते हैं SP साहब के, तो कितने बढ़िया कमाल के गाने होते हैं ना। बहुत ही सारे गाने हैं इनके और बहुत ही कमाल धमाल और बेमिसाल। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये गाना भी काफ़ी बहुत मेरे दिल के भी करीब है और ये गाना वैसे भी बहुत ही प्यारा है। बाकी क्योंकि आज की तारीख 1 अक्टूबर है और मैं आपको बता दूं कि आज जो है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी मनाया जाता है। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन यानी कि इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2014 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक निर्णय लिया था। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर 2015 को इटली में मनाया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पेयों में से एक कॉफ़ी ये मानी जाती है, कॉफ़ी के जायके और संस्कृति का जश्न मनाना। दूसरा, लाखों कॉफ़ी किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति ध्यान आकर्षित कराना। साथ ही साथ फेयर ट्रेड और टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल कॉफ़ी खेती को बढ़ावा देना। यही नहीं, ये दिन केवल कॉफ़ी पीने के आनंद के बारे में नहीं है बल्कि खेत से लेकर के कप यानी कि फार्म टू कप तक की यात्रा में शामिल सभी लोगों के श्रम को सम्मानित करने का एक अलग तरीके का अवसर और पर्सपेक्टिव ये हमें देता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने बात की, इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों का सम्मान, देखभाल और इसका अधिकार दिलाना। वहीं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, स्वेच्छा से रक्तदान कर जीवन को बचाना। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और वृद्ध जन दिवस की शुरुआत हुई थी 1991 में और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस की शुरुआत की गई थी 2015 में, ताकि किसानों का समर्थन और कॉफ़ी संस्कृति, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। बाकी आपका क्या कहना है, कुछ कहना है बताना है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। फिलहाल दोस्तों क्योंकि ये एल्बम ही इतनी प्यारी है, मैंने प्यार किया इस मूवी का एक और गाना हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहां आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सूर्यवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
1: आँखों ही आँखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
2: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
3: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि आज हम लोग क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्यों आज का दिन और भी खास हो जाता है, और आखिरकार आज के दिन और क्या मायने हैं। वैसे दोस्तों, आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। 9639012111 नंबर हो जाता है मेरा। और इसी के साथ 11:39 हो गए हैं, और इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों, कॉफ़ी की दुनिया मुख्य रूप से एक्सप्रेसो, जिसमें कि बेस दूध, मिल्क, पानी और फोम के रेशियो पर टिकी होती है। चलिए, क्योंकि आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी है, तो कॉफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी के बारे में बात करें तो इसमें दूध का उपयोग नहीं होता। ये कॉफ़ी प्रेमियों के लिए असली स्वाद और मजबूत कैफीन देने के लिए जानी जाती है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है एस्प्रेसो का। अब इसके बारे में चलिए आपको बता देती हूँ। ये सभी आधुनिक कॉफ़ी का बेस है। बारीक पीसे कॉफ़ी बीन्स से हाई प्रेशर और गर्म पानी के माध्यम से निकाला गया गाढ़ा एक्सट्रैक्शन ये होता है। ये छोटा यानी कि 30 ml, लेकिन बहुत कड़वा और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसके ऊपर सुनहरी झाग होती है, जिसे क्रेमा कहते हैं। वहीं अमेरिकनो की बात करें तो ये एक शॉट एक्सप्रेसो में गर्म पानी मिलाकर बनाया जाता है। इसका स्वाद एक्सप्रेसो से हल्का होता है थोड़ा, लेकिन रेगुलर ब्लैक कॉफ़ी की तुलना में ज़्यादा स्मूदी होता है। इसी के साथ हम रिस्ट्रेटो की बात करें तो एक्सप्रेसो बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली पानी की मात्रा को आधा करके ये बनाया जाता है। ये एस्प्रेसो से भी ज़्यादा गाढ़ा और कम कड़वा होता है, क्योंकि इसमें कम पानी के साथ साथ मुख्य रूप से मीठे एसिडिक तत्व ही निकल पाते हैं। वहीं अगर हम मिल्क बेस्ड कॉफ़ीज के बारे में बात करें, यानी कि दूध वाली कॉफ़ी के प्रकार के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है कैपेचिनो का, जो कि एक तिहाई एस्प्रेसो, एक तिहाई स्टीम्ड मिल्क और एक तिहाई गाढ़ा मिल्क फॉर्म इसको बना करके बनाया जाता है। इसके ऊपर दूध की झाग की एक मोटी और हल्की परत होती है। स्वाद में कड़वाहट और दूध का संतुलित ये मिश्रण होता है। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कैफे लैटे के बारे में, यानी कि कैफे लाते के बारे में, और किस तरीके से ये बनाई जाती है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल चलिए साजन मूवी का ये प्यारा सा गाना हम इन्जॉय करेंगे। इसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 12:15 हो गए हैं, 1 अक्टूबर आज की तारीख है, और इसी के साथ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कॉफी डे। एंड कितने टाइप की कॉफी होती है, अभी हमने कुछ देर पहले ब्लैक कॉफी की बात की, अभी हम मिल्क बेस्ड कॉफी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कैफे लाटे के बारे में बात की, कैपेचिनो के बारे में बात की, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लैट व्हाइट के बारे में। इसमें 2 शॉट एस्प्रेसो यानी कि डबल शॉट एस्प्रेसो प्लस माइक्रोफॉर्म दूध को मिक्स किया जाता है। मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ये प्रसिद्ध है। इसमें लाते की तरह दूध तो होता है, लेकिन एस्प्रेसो का कड़क स्वाद ज़्यादा उभर करके आता है। और इन बिटवीन मुझे याद आया कि मैंने ना अभी आपको कैफे लाते के बारे में बताया ही नहीं था। चलिए आपको बता देती हूँ, इसमें जो हमारा रेशियो रहेगा 1 शॉट एस्प्रेसो, और इसमें हमें लेना है 2/3 स्टीम्ड मिल्क प्लस ऊपर से थोड़ी सी मिल्क फॉर्म की पतली सी परत। इसकी जो स्पेशलिटी है ये है कि ये कैपेचिनो की तुलना में बहुत स्मूथ और कम कड़वी होती है, क्योंकि इसमें दूध की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ी सी कम कड़वी होती है टेस्ट वाइज। बाकी एस्प्रेसो मैचिएटो की बात करें तो 1 शॉट एस्प्रेसो के ऊपर 1 छोटा सा चम्मच डॉट मिल्क फॉर्म हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद मैचिएटो का अर्थ आपको बता दूँ दागदार या फिर स्टेन्ड हम इसको बोलते हैं। ये एस्प्रेसो की कड़वाहट को बिना दूध मिलाए हल्का करने का तरीका होता है, समझे कि नहीं। इसी के साथ कैफे मोका की बात करें तो इसमें

एक शॉट एस्प्रेसो प्लस चॉकलेट सिरप या पाउडर भी आप डाल सकते हैं। स्टीम्ड मिल्क इसमें डलती है, व्हिप्ड क्रीम इसमें डाली जाती है और ये कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट का एक मिश्रण होता है। मीठा और चॉकलेट स्वाद पसंद करने वालों की पसंदीदा ये वाली कॉफ़ी रहती है। इसी के साथ कोल्ड कॉफ़ी की बात करें और जो भी स्पेशल कॉफ़ीज़ है इसके बारे में बात करें, तो कोल्ड ब्रू इसमें गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी में 12 से 24 घंटे तक भिगोकर धीरे धीरे इसको निकाला जाता है। ये कम एसिडिक होता है और स्वाभाविक रूप से थोड़ी मीठी होती है। इसी के साथ होता है एफोगेटो, ये वनीला आइसक्रीम के ऊपर एक स्कूप पर गर्मा गर्म एस्प्रेसो शॉट डाल करके परोसा जाता है और ये एक इटालियन डिजर्ट कॉफ़ी है। वहीं आयरिश कॉफ़ी की बात करें तो ये हॉट कॉफ़ी में आयरिश विस्की, चीनी और ऊपर से क्रीम मिलाकर बनाई जाने वाली कॉकटेल स्टाइल कॉफ़ी है। इसको भी लोग दुनिया भर में काफ़ी पसंद करते हैं। बाकी चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जाबाज़ मूवी का, आई होप आपको पसंद आएगा। और क्योंकि आज वर्ल्ड कॉफ़ी डे है तो आप कॉफ़ी पीते पीते भी इस गाने को इन्जॉय कर सकते हैं। कुछ देर बाद हम रक्तदान के बारे में बात करेंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यूँ ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ।

0: दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाए सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। आज के इस कार्यक्रम का नाम है जिंदगी क्या मिलेगी दोबारा, और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रक्तदान के बारे में। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें मिली है सुभारती विश्वविद्यालय की संघ माता डॉक्टर मुक्ति मैम के द्वारा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार। सेहत भरी खुशियों का लेकर के पैगाम, सेहत भरी खुशियों का लेकर के पैगाम, आरजी वंशी फिर करती है आपको सलाम। आज हम बात करेंगे रक्तदान के बारे में। असल में ये आम विषय हो सकता है, लेकिन आम होने के बावजूद भी ये एक अहम विषय बन जाता है। जैसे रक्त जीवन रक्षक होता है, बिल्कुल वैसे ही जीवन भक्षक भी हो सकता है। वो कैसे, इसके बारे में आज ढेर सारी बातें आपसे करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और अमल करिएगा, क्योंकि खून अगर दूषित हुआ हमारा तो ये जिंदगी क्या मिलेगी दोबारा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्तदान क्यों जरूरी है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन जीवन की गति बढ़ रही है, जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, और जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना। इसके साथ ही कुपोषण बढ़ रहा है, और साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं नए रोग। इससे रक्त की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और दूसरी तरफ रक्त की उपलब्धता ये तभी संभव है जब अधिक से अधिक संख्या में लोग स्वैच्छिक रक्तदान करें, यानी के वॉलंटरी बेसिस पर ब्लड डोनेट करें। रक्तदान से किसी का जीवन बचता है तो स्वयं को अधिक संतुष्टि भी होती है, अपने शरीर में भी रक्त बनने की क्रिया में तीव्रता आती है। क्या पता कल हमें भी रक्त की आवश्यकता पड़े, हो सकता है ना ऐसा। तो यदि हम रक्तदाता हैं, तो अनेकों लोग हमारे लिए भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित होंगे, और ये हमारा राष्ट्रीय साथ ही साथ सामाजिक दायित्व भी बन जाता है। दोस्तों, रक्तदान क्यों करना है आखिर, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, या बच्चा होने पर काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ऑपरेशन होने पर, रक्त की बीमारी या कोई अन्य रोग में रक्त की शरीर में अत्यधिक कमी हो सकती है, तो कभी कभी जीवन रक्षा के लिए इस कमी को एक सीमा तक तुरंत रूप से दूर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। मनुष्य में रक्त की कमी को तुरंत पूरा करने के लिए मनुष्य का ही रक्त चाहिए होता है, और ये ही एकमात्र साधन भी है। इसके अलावा कोई और विकल्प यानी कोई और ऑप्शन नहीं है। ये रक्त स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा दान में दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त इसे कहीं से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। आपके खून की एक बूंद रोगी का बहुमूल्य जीवन बचा सकती है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको आप भी हमसे साझा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या मैं कहूं स्वच्छ भावना से अन्य के लिए रक्त देता है, तो उसे स्वैच्छिक दान कहा जाता है। ये रक्त स्वस्थ रोग रहित होता है। यदि कोई व्यक्ति रक्त आर्थिक लाभ के लिए देता है, तो कल्पना कीजिए वो व्यक्ति कौन व कैसा होगा, उसके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से कुपोषित, रोगग्रस्त व असामाजिक प्रवृत्तियों का होता है। उसके रक्त में पीलिया, मलेरिया, एड्स जैसी गंभीर रोगों के कीटाणु वायरस हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से कुछ समय बाद ही ये एक अभिशाप बन जाता है। क्या किसी व्यक्ति की जान बचाकर उसका जीवन अभिशापित करना ठीक बात है, इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। और अगर आप स्वस्थ हैं, रोग रहित हैं, तो आज ही ये इनिशिएट कीजिएगा।
कि आपको भी एक रक्त दाता बनना है, यानी के रक्त दान करना है, वो भी स्वैच्छिक, क्योंकि इससे आप कई लोगों की जिंदगानी बचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर रक्तदान कौन कर सकता है। चलिए ये शंका भी आपकी दूर कर देती हूँ। रक्तदाता की उम्र 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। रक्तदाता का हीमोग्लोबिन 12.5 या इससे अधिक होना चाहिए। वहीं आपको बता दूं, रक्तदाता का तापमान व पल्स सामान्य होनी चाहिए। रक्तदाता का वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। रक्तदाता का रक्तचाप बिना दवाई के नॉर्मल होना चाहिए। रक्तदाता को हृदय रोग दौरा की शिकायत नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं, महिला रक्तदाता रक्त देते समय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा और उसके बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन आपको चलिए कुछ और तथ्य बता देती हूँ जो रक्तदान से ही रिलेटेड है। एक इकाई रक्त का अर्थ है 350 से 450 मिलीलीटर रक्त, और वहीं स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में लगभग 500 मिलीलीटर रक्त हर टाइम जमा रहता है। जैसे ही रक्तदाता रक्त देता है, तिल्ली सिकुड़कर उतना ही रक्त नलिकाओं में छोड़ दिया करती है, यानी के रक्तदाता को किसी भी समय रक्त की तनिक भी कमी महसूस नहीं होती। एक इकाई रक्त की मात्रा 24 घंटे में, जी हाँ, महज 24 घंटे में बनकर तिल्ली में पुनः जमा हो जाती है, यानी के रक्तदान पूर्णतः सुरक्षित होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो रक्तदान कर सकता है, और एक व्यक्ति यदि प्रति 3 माह में भी रक्तदान करे तो पूर्णतः स्वस्थ व सुरक्षित रहता है। लेकिन दोस्तों, जब भी कभी किसी बीमार व्यक्ति या किसी नीडेड व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की बात आती है, अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या उन्हें रक्त डायरेक्टली चढ़ा दिया जाता है, तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रक्त को चढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जांच की जाती है, जैसे कि HIV जांच, हेपेटाइटिस बी जांच, हेपेटाइटिस सी जांच, मलेरिया पैरासाइट जांच, इसके साथ ही VDRL यानी के सिफिलिस की जांच की जाती है, और उसके बाद ही मरीज को खून चढ़ाया जाता है ताकि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। दोस्तों, रक्त मनुष्य के जीवन का बहुत अमूल्य उत्तक है, जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। मानव रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC शरीर के विभिन्न उत्कों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, और आजकल मनुष्य क्योंकि बहुत बीमारियों से ग्रसित है, जिसके उपचार के लिए रक्त चढ़ाने की आवश्यकता बढ़ती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि रक्त का अगर ठीक तकनीक से परीक्षण ना किया गया हो तो रक्तदाता के रक्त में मौजूद अनेक प्रकार की संक्रमित बीमारियां मरीज को रक्त चढ़ने के बाद हो सकती हैं, जिनमें कुछ संक्रमण तो ऐसे हैं जो शीघ्र पता लगने पर इलाज करने के बाद ठीक हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, सिफिलिस, कुछ ऐसी बीमारियां। लेकिन वहीं कुछ ऐसी संक्रमित बीमारियां हो जाती हैं जो एक बार रक्त चढ़ने से मरीज को अगर हो जाए तो वो जीवन भर ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि HIV या मैं कहूँ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और मरीज का जीवन दूषित रक्त चढ़ने के बाद एक अभिशाप भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अभिशाप न बनने दें। जब भी आप स्वस्थ रहें और रोग मुक्त रहें, तभी अपना ब्लड डोनेट करें। ये ही है एक असली दान, यानी महादान। इसलिए तो कहा जाता है ना, रक्त से करो समझौता तो घातक बीमारियों को दो न्योता। ध्यान से सुनो, लगन से करो और समझो हम सबका अचूक इशारा, क्योंकि जिंदगी है एक, क्या कभी किसी को मिली है दोबारा।
दोस्तों आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। ये है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि आपको पता ही है, यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। वो कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा भी उन्होंने ही दिया।

ये किताब हमको सिखाती है अपने देश से प्रेम करना। दोस्तों, जैसा कि आजकल आपने खूब सुना होगा सिविक सेंस के बारे में, यानी एक नागरिक का आचरण, एक चरित्र कैसा हो, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार का होना चाहिए। यह किताब हमको सिखाती है कि देश का निर्माण केवल मानचित्र की वक्रीय रेखाओं से नहीं होता, उसका एक चेतना लोक भी होता है जो नागरिकों, व्यवस्था संचालकों और राजनेताओं के ईमानदार प्रयासों से सक्रिय होता है। इस चेतना लोक में उस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और गौरवशाली प्रसंग और इतिहास सम्मिलित होता है। भारत की मूल संस्कृति सदैव सनातन रही है। ये सनातन संस्कृति का ही प्रभाव है कि आज भारत में संपूर्ण विश्व के सभी मतों को मानने वाले लोग पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह संस्कृति सर्वग्राह्य संस्कृति है जो मानव और मानव के मध्य की भेदक रेखा को समाप्त करती है। जहाँ जहाँ इस संस्कृति का नुकसान हुआ है, वहाँ वहाँ सामाजिक स्थिति बद से बदतर हुई है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान इसके उदाहरण रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश सजीव उदाहरण है। यदि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं एवं विकास करना चाहते हैं तो सनातन को बचाने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति अथवा धर्म है क्या? सनातन किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड अथवा पारलौकिक मान्यताओं के मकड़जाल में उलझी कोई व्यवस्था नहीं। सनातन वे भाव हैं जो सृष्टि की रचना के साथ आए एवं जब सृष्टि रहेगी तब तक उन्हीं भावों के आधार पर रहेगी। वे भाव है प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें उपयुक्त सभी भाव हों। धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सभी कहे जाने वाले कथित धर्म तो केवल संप्रदाय या मत ही हो सकते हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक है। गणतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सूचना संचार प्रणाली, जिसे हम सुविधा के लिए सम्मिलित रूप से मीडिया भी कह देते हैं। इन सभी संस्थाओं की कार्यशैली वर्तमान में परिष्करण अथवा आमूलचूल सुधार चाहती है। दूसरी ओर वर्तमान में आम जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के दलदल में फंसी हुई है, निकलना ही नहीं चाहती। देश के विषय में सोचने का इनके पास ना तो समय है और ना ही इच्छा। चीन में वर्तमान सत्ता हमारी कथित स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई। आज चीन एक विश्व की शक्ति बन चुका है और हम अपनी पहचान एवं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी देश प्रेमियों को इससे चिंतित होना चाहिए और इस समस्या के समाधान की खोज करनी चाहिए। अपनी सामान्य बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी समस्याओं का मूल कारण ये है कि हमें अपने देश का ना तो सही इतिहास बताया गया और ना ही इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि हम ये समझें कि हमारी सोच सबसे पहले देश के प्रति होनी चाहिए, बाकी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र तो बाद में आते हैं। हमारा मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं राष्ट्र चेतना कार्यक्रम, जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर।
इसी पुस्तक से जो अंश मैंने अभी आपको सुनाया, जो मैं समझता हूँ इस पुस्तक से कि सर्वप्रथम हमें अपने देश के प्रति सचेत होना चाहिए, अपने देश के बारे में सर्वप्रथम हमको सोचना चाहिए। पुस्तक के लेखक हमको ये समझाना चाहते हैं कि देश सबसे पहले होता है। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जो भी कार्य करते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति सोचना होगा। चाहे आप ठेला लगाते हो, आप मजदूर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप छोटे से छोटा कोई कार्य या बड़े से बड़े कोई धुरंधर कार्य भी करते हो, तब भी सर्वप्रथम आपका ये कर्तव्य, आपका ये धर्म बनता है कि सबसे पहले हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ये प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि अपने देश के भावी कर्मचारियों को अपने देश का सही इतिहास बताया जाए, उन मूलभूत विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र के लिए आवश्यक है। बस यही एक उपाय है। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाना चाहते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के विषय में सोचें, उनमें राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो, कि देश को ऐसी युवा पीढ़ी मिले जो राष्ट्रीय भाव को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए देश के नव निर्माण में सहयोगी हो। किसी भी समाज का निर्माण चरित्रवान नागरिकों से होता है। चरित्र की परिभाषा बहुत ही व्यापक है, उसमें नैतिकता के साथ राष्ट्रबोध एवं राष्ट्र शोध भी सम्मिलित होते हैं। इसी भाव से इस कार्यक्रम को भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम का आधार है राष्ट्र अनुभूति। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुभारती आजाद हिंद रेडियो की इस खास पहल में। आप भी जुड़िए और आपके विचार शेयर कर सकते हैं 9639012111 पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी।

0: Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय एवं सुभारती ग्रुप के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। डॉक्टर अतुल कृष्ण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, संभवतः यह किसी एक व्यक्ति का नाम हो भी नहीं सकता। डॉक्टर अतुल सरीखे किसी व्यक्तित्व का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक, विस्तृत, भव्य और विशाल हो, उसे किसी परिभाषा के दायरे में रखकर परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी मूल रूप से शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन ये उनका एकमात्र परिचय नहीं। वे जितने प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक रहे हैं, उतने ही कर्मशील एवं ध्येयनिष्ठ सामाजिक शल्य चिकित्सक भी हैं। सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए वे वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रकल्पों का नेतृत्व भी करते हैं, साथ ही उसमें अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सहभागिता भी करते हैं। जैसा कि उनके चिंतन और व्यवहार से लगता है कि वे एक स्वस्थ सामाजिक संरचना के पक्षधर हैं, इस दिशा में उनके प्रयास प्रशंसनीय है। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष उनका राष्ट्र चिंतन है, भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति परम आस्था और राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान भाव उनके स्वाभाविक कर्म का आधार है। उनकी राष्ट्र शोध से राष्ट्र बोध की वैचारिक यात्रा उनको समाज और राष्ट्र में विशिष्ट बनाती है। उनकी लिखी इस अलौकिक पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर आधारित

क्यों भाई, फाइव स्टार होटल बना रही है गदरे के साथ? हाँ? बादशाह सराय बनाया करते थे मुसाफिरों के लिए, प्याऊ भी लगाया करते थे प्यासों के लिए। तू पंप लगवा दे, नल लगवा दे बस्ती में, लोग दुआएं देंगे। 50 साल हो गए पानी नहीं दे सके।

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियाँ मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत की संस्कृति, चरित्र क्या है, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, माता पिता का आदर और सम्मान किस प्रकार करें, शिक्षकों और गुरुओं संतों का सम्मान किस प्रकार करें, जीवन उपयोगी दैनिक व्यवहार क्या होता है, कार्य का सम्मान, व्यायाम, योग, ध्यान एवं शारीरिक साधना, यातायात के नियमों का पालन करना, पर्यावरण और प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल करें, मोबाइल का उपयोग और प्रयोग, नशे से किस प्रकार दूरी बनाई जा सकती है, नशे को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सनातन और सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान यानी जन गण मन, आजाद हिंद गान क्या है, जय हिंद का नारा क्या और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और इसका ज्ञान हर बच्चे को किस प्रकार होना चाहिए, सैनिकों और उनके परिजनों का, परिवारों का सम्मान, स्वतंत्रता कैसे मिली, बिना लाठी, बिना खड़ग, बिना ढाल के नहीं मिली, कितने कोटि कोटि क्रांति वीरों ने अपना योगदान दिया, संयुक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 21 अक्टूबर की विशेषता क्या है, भारत का ध्वज क्या है, भारत का संविधान क्या है। तो राष्ट्र अनुभूति नाम की इस पुस्तक में इसके लेखक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने हर विषय को ले लिया है, यानी हर वो संस्कार जो हमारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता मित्रों कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को वो सारे संस्कार कंट्रोल रूप में देना जिससे उसका भविष्य का निर्माण होगा। हर उस बात पर कंट्रोल एक माता पिता का होना चाहिए जो आपके बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है। पुस्तक हमको सिखाती है कि हमें अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका नाम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस अलौकिक कार्यक्रम में। ये अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि एक एक विषय हमारे बच्चों को संस्कार देने का काम करेगा। तो चलिए, फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।

सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और हमारे एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत आप सभी का राष्ट्र चेतना। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। कि शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी, उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं, उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें, तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: हेरे आँख में स्याही और नजर को ढाली, वही मार गई यकी, हेरे काले

रोकण लग्या भाई। उसने मेरे प्रति बहुत हमदर्दी करी, मेरे को टाइम दिया, समय के अनुसार वह आई। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया, बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँ।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद।

जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम जय जवान जय किसान। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि गांव में रहकर आप कैसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं, क्या आपके छोटे मोटे उद्योग धंधे डेयरी गुड़ वगैरह वगैरह आप गांव में शुरू कर सकते हैं, कुछ अलग प्रकार की फसलें आप कैसे ट्राई कर सकते हैं, कुछ पालन जैसे गाय पालन, पशु पालन या मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गा पालन जो होता है कड़कनाथ मुर्गा वगैरह, ये सब के बारे में हमने अक्सर आपको बताया। सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, आज भी कुछ ऐसी ही बातें लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरसों की अगेती फसल के बारे में, उसके लाभ के बारे में। देखिए, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, सरसों के तेल की डिमांड कितनी ज्यादा है, सरसों की डिमांड कितनी ज्यादा है। आप तेल बेच सकते हैं, आप साबुत सरसों भी बेच सकते हैं, आप खेत में खड़ी फसल भी बेच सकते हैं। हर चीज की डिमांड है, यहां तक कि आप सरसों काट लेते हैं तो जो सरसों की लकड़ी बचती है अब उसका भूसा भी बिक जाता है। जो भट्टा, ईंट भट्टा जो होता है, वो जो चलाते हैं, वो लोग उसको भी खरीद लेते हैं। यानी सरसों में एक भी चीज वेस्ट होने वाली नहीं है, आपको तमाम तरह के फायदे हो सकते हैं। तो सरसों की खेती के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। खेत को भुरभुरा और समतल आपको रखना ही चाहिए, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था रखनी ही चाहिए, क्योंकि सरसों के खेत में पानी का ठहराव बेकार कर सकता है। खेत की मिट्टी भुरभुरी बहुत जरूरी होती है, सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। अच्छी तरह से कौन सा बीज आप लेंगे ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बीज आपके यहां पर, आपके खेत में, आपकी मिट्टी में अच्छे रिजल्ट देकर आएगा। अगेती बुआई, जो बहुत ज्यादा अगेती, देखो हर बीज का अपनी एक खास बात होती है कि कौन सा बीज अगेती फसल वाला है, कौन सा पचेती फसल वाला है और कौन सा अपने मौसम में अपने समय पर होगा। तो हर बीज अगेती फसल में नहीं बोया जाता, अगेती फसलों के बीज अलग आते हैं, हाइब्रिड बीज होते हैं वो, तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करें।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो

0: किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद दोस्तों, यह जय जवान जय किसान। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सरसों की अगेती फसल के लाभ। देखिए अगर आप अगेती फसल बोते हैं तो सरसों की डिमांड रहती है तो आपको अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, अच्छे पैसे पर आप बेच सकते हैं। पछेती फसल भी ऐसी होती है कि जब सीजन बीत जाता है अब माल की जो डिमांड रहती है तो अच्छे रेट रहते हैं। हालांकि सरसों के रेट अब कभी कम नहीं होते, सरसों की डिमांड और खपत लगातार बढ़ रही है, तो सरसों की फसल बोना आपके लिए फायदे का सौदा रह सकता है। मैंने आपको बताया कि जो खेत है वो जो मिट्टी है आपके खेत की भुरभुरी होनी चाहिए, अच्छे से जुताई वगैरह कीजिए, समतल होनी चाहिए, खेत में कहीं पानी भरा नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। सरसों के खेत में अगर पानी भरा रहता है तो नुकसानदायक होता है सरसों की फसल के लिए। इसके अलावा जब बीज आप लेंगे तो प्रमाणित बीज लेना है, अच्छा कंपनी का बीज लेना है ताकि आपकी फसल अच्छी जमे, उग आए, अंकुरण अच्छा हो। जिस फसल का अंकुरण क्षमता अच्छी होती है वो फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। बीज उपचार जरूर करना है। अगर आप ऐसा बीज लेकर आए जिसको कंपनी ने उपचारित करके नहीं बेचा, क्योंकि आजकल जो सीलबंद पैकेट वाले बीज आते हैं कंपनी पहले से ही उनको उपचारित करके दवाइयों के साथ उपचारित करके बेचती है, अगर आप ऐसा लेकर आए हैं या आपने किसी दूसरे किसान से बीज खरीदा है तो खुद आपको बीज का उपचार करना चाहिए। बुआई से पहले बीज का उपचार करने से शुरुआती अवस्था में कई जो बीमारियां, रोग, कीट ये फसल पर हमला करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दवा और मात्रा आप विशेषज्ञों से जरूर पूछ लीजिएगा कि कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, आपको दुकान वाले भाई साहब आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा कीटों की निगरानी भी आपको करनी चाहिए। फसल निकलने के बाद माहू जैसे कीट की नियमित निगरानी करनी है, फसल के ऊपर बहुत ज्यादा कीट हमला कर देते हैं। और जब सरसों उग आती है, अंकुरण अच्छा होता है, हरे हरे खूबसूरत सुंदर मुलायम पत्ते होते हैं, तो साग तोड़ने वाले लोग भी बहुत आते हैं ना जिनको साग बनाना होता है, तो अगर आपने खेत में कोई जहरीली दवाई स्प्रे कुछ ऐसा किया है तो वो भी आप बता दिया करें, क्योंकि कई बार लोग साग खाने के चक्कर में पत्ते तोड़कर लेकर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसमें जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया गया है। मैं तो कहता हूं हमेशा आपसे कि आपको कभी भी जहरीले तत्वों का, जहरीले रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल अपनी फसलों में नहीं करना चाहिए दोस्तों।

0: ये आसमान में रहने वाले आज धरती पे क्यों कर?
1: मैं तेरी खातिर आई सू।
0: अच्छा, पहले कदे ना आई मेरी आदत में?
1: तेरे बिना सारा चंडीगढ़ सुना सुना लग गया था।

ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन के नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ मनसा सेठ की हाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जोता, सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागर से चिट्ठी आ जाती है भात की, अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है। और कहने के झगड़े बहुत है, आप श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं, सरसागर में आ जाते हैं। और हरनंद जी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरड़ा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे, जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी लज्जा को डबो दिया, आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है और क्या नरसिंह बाप और बेटी की क्या आपस में

जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। यह जय जवान जय किसान और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सरसों की अगेती फसल के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगेती फसल बोना तो अच्छी बात है, लेकिन हर बीज अगेती फसल का नहीं होता, उसके लिए अलग बीज आते हैं, हाइब्रिड बीज आते हैं। आप जब भी बीज वाली दुकान पर जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि आपको कौन सा बीज, किस वैरायटी का बीज और क्यों चाहिए, तब वो आपको दो चार ऑप्शन देंगे, फिर एक अच्छा ऑप्शन आपको लेकर आना है और फिर अपनी फसल आपको बोनी है। अच्छे बीज का चुनाव ही आपको करना चाहिए दोस्तों, प्रमाणित बीज हो और अपने क्षेत्र के अनुकूल परिस्थितियों के लिए। मान लीजिए आपके यहां पर वातावरण कैसा रहता है, अगेती किस्म का जो बीज होता है आपको वो लेना है, क्योंकि अंकुरण और फसल की एक रूपता बेहतर रहती है उसमें। बीज उपचारित करना भी जरूरी है। आजकल जो कंपनीज होती है वो उपचारित करके ही बीज को बेच रही है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद नमी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं रहना चाहिए। खेत में भरा हुआ पानी फसल को नुकसान पहुंचाता है।

0: जय हिंद वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। जय जवान जय किसान, और मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। किसान भाइयों, यहां पर हमने बहुत सारी बातें की है सरसों के बारे में। कुछ किसान भाइयों का कहना होता है कि अगेती बोना ही क्यों है। देखिए, अगेती फसल के अपने अलग तरह के लाभ होते हैं, पछेती फसल के अलग तरह के लाभ होते हैं, और नॉर्मल टाइम पर सीजन में पीक में जो आप सरसों या कोई भी फसल बोते हैं उसके अपने अलग लाभ होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और आपकी पिछली फसल जो खड़ी है खेत में वो कब कटेगी। अगेती फसल का एक मूल लाभ यह है कि सही समय, सही किस्म और अच्छी देखभाल से फसल जल्दी तैयार हो जाती है, तो जल्दी बिक जाती है, अच्छे प्राइस पर अच्छे रेट पर बिक जाती है। सरसों में अच्छी पैदावार सिर्फ बीज से नहीं बल्कि सही समय की बुआई, सही नमी और समय पर निगरानी से तय होती है। इसीलिए दोस्तों, इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर है 9639012111। पिछली बार, पिछले सीजन में जो सरसों आपने बोई थी, कितने अच्छे दाम आपको उसके मिले हमें जरूर बताइए। क्या बीमारियां आपको ज्यादा देखने के लिए मिली आप ये हमें बता सकते हैं, और क्या उसका आपने इंतजाम किया, और आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में सरसों ज्यादातर किसान अगेती बोना पसंद करते हैं या पछेती या गेहूं के ही साथ बोते हैं।
1: समय की एक कॉलेज की लड़की एक लड़के से नजर लड़ जाती है,

हेरे आँख मस्याही और नजर को डाली वही मार गई यकी हेरे काल।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान,
1: मेरे देश की धरती।
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

जय हिंद किसान भाइयों, ये है आपका अपना जय जवान जय किसान कार्यक्रम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। हमने बात की आज यहाँ पर सरसों की फसल के बारे में। अगेती बोएंगे तो बहुत लाभ है, वैसे सरसों आप कभी भी बोएं लाभ ही होता है, मतलब अपने सीजन में बोएं कभी भी बोएं लाभ ही होगा क्योंकि सरसों के रेट हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। सरसों एक ऐसी फसल है जिसका पत्ता भी बिकता है, जिसका साग आप बेच सकते हैं शुरू में काटकर, फिर आप उसकी लकड़ी भी बेचेंगे, लकड़ी का भूसा भी बिकता है, सरसों की खली भी बिकती है, सरसों का दाना भी बिकता है, सरसों का तेल भी बिकता है। सरसों की एक भी चीज वेस्ट नहीं जाती है दोस्तों। अगर आप गांव में रहते हैं, नॉर्मल आग वाला चूल्हा जलाते हैं, तो वहां पर आप लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी का भूसा बनवाकर जो भट्टे वाले होते हैं, जो ईंट भट्टा जहां पर चलता है, वो लोग लकड़ी का उसका भूसा इकट्ठा कर लेते हैं, वो उसको खरीद लेते हैं। सरसों हर रूप में आपको कमा कर देकर जाती है, इसीलिए मैंने आज यहां पर सरसों के लाभ बताए। आप इस बारे में विचार करेंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल वक्त हो चला मेरे आज का जाने का, अगले कार्यक्रम में कुछ और जानकारियां लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम
2: रोज

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: मडरा रहे थे। तुझमें ये हमदम, तुझमें ये हमदम, अगर है दम तो दामन थाम ले। तुझमें ये हमदम, अगर है दम तो मेरा दामन थाम ले। हे अगर हैरान तो ए नादान, फिर ना मेरा नाम ले। मेहरबानो, बस हीरे के दिल में कांटा सा चुभ गया, जख्म बन गया, और क्या सोचने लगी इन दौलत वालों के आगे पार नहीं बसाएगी। कहीं ताकत के पंजे में उसे ख्याल आ गया, कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटियां गरीबों की। भरे हैं गम के आंसू और आंख में बह नहीं सकते, तुम्हारे सामने लुटते हैं और हम कह नहीं सकते। मेहरबानों के आलम का
1: अरे चली बिछड़ के हीरे, जब रांझे की याद आई, तन पटमल

0: ओ मेरी सासू की, भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो? ए सेठानी, नीर बुरन चलेगी आज? ना जाऊंगा ना, गई तो पूरी बन ठंड कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है, तू किनारिये जागी, नुए चली जा।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

अहिन वंदे मातरम, आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्वागत है आप सभी का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। इसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। जी हाँ, विटामिन B12 सब जानते हैं इसको, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, क्यों होता है, कितना खतरनाक हो सकता है, आज के एपिसोड में यही जानकारी है।

सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में मैं हूँ वास्तु कृष्ण आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जिसकी कमी कई बार शरीर में चुपचाप बढ़ती रहती है। शुरुआत में लगता है बस थोड़ी कमजोरी है, थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी हाथ पैरों में थोड़ी झंझनाहट या सुन्नपन होना, कभी चक्कर आना। हम कहते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई है, शायद काम ज्यादा हो गया था, शायद डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस हो गया है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इन छोटी छोटी परेशानियों के पीछे विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, याद रखिए। और B12 की कमी वाले को हल्के में बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेना, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ खून से नहीं होता बल्कि हमारे दिमाग और नसों के स्वास्थ्य से भी होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा B12 की कमी, कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव यानी इसका ट्रीटमेंट।

0: जी हाँ दोस्तों, यह सेहत सही लाभ गई वास्तु कृष्णा के साथ है आप सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। विटामिन B12 आखिर है क्या, इसकी कमी क्यों होती है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कमी कितने समय में सामने आती है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या खाना चाहिए और सबसे जरूरी इलाज कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। B12 हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, DNA बनाने में, नर्वस सिस्टम यानी हमारी नसों के सही कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर शरीर में एक तरह की एनीमिया हो सकती है, यानी समस्या सिर्फ एनीमिया तक नहीं रहती, कुछ लोगों में नसों से जुड़े लक्षण एनीमिया से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि B12 की कमी आखिर होती क्यों है? सबसे पहला कारण है खाने में पर्याप्त B12 न मिलना। B12 प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और दूध दही जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में मिलता है। जो लोग लंबे समय तक पूरी तरह से शाकाहारी या वीगन भोजन लेते हैं उनमें B12 की कमी सामने नजर आने लगती है। दोस्तों पुराने जमाने में याद होगा कि हम अपने खेत से कुछ मूली गाजर ऐसे कर सीधा खा लिया करते थे, है ना? तब केमिकल इतने ज्यादा नहीं होते थे, कीटाणुओं से हम लोग इतना ज्यादा नहीं डरा करते थे। मिट्टी में B12 होता है दोस्तों, और मांसा जो हार होता है, जो मांस से जुड़ी जैसे अंडा, मछली या जो भी मीट वगैरह के ऐसे खाने के प्रोडक्ट होते हैं लोगों के, उनमें B12 इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग ना मिट्टी, घास ये सब ज्यादा खाते रहते और मिट्टी उस माध्यम से उनके अंदर चली जाती है, ऐसा माना जाता है। तो बात अब यह है, B12 की कमी सिर्फ कम B12 खाने से नहीं होती। कई बार व्यक्ति अच्छा खाना खा रहा होता लेकिन फिर भी शरीर B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कि हमारा जो शरीर है वो ठीक से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है, तब भी B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि भोजन से B12 को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए पेट और आंत की एक पूरी प्रक्रिया की जरूरत होती है। पेट में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पेट या छोटी आंत से जुड़ी समस्या है, कुछ प्रकार की सर्जरी हुई है या शरीर B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो भोजन पर्याप्त होने के बावजूद भी ये कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से भी B12 एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन और मेटफॉर्मिन। इसका मतलब ये नहीं कि इन दवाओं को अपने आप बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसी दवा लेते हैं तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ भी B12 एब्जॉर्प्शन की समस्या ज्यादा देखी जा सकती है और कुछ लोगों में इसकी समस्या तब भी ज्यादा नजर आती है जिनका पेट अक्सर खराब रहता है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है, तब 100% आपके अंदर कमी आएगी B12 की। आगे इस बारे में और बात करेंगे।
1: स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में स्मार्ट एनजीओ की जो ये खास प्रस्तुति आप सुन रहे हैं, आज हम विटामिन B12 के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि विटामिन B12 काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगर आपके अंदर कमी आ जाए तब। दोस्तों अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लक्षण। आपको पता कैसे चलेगा कि B12 की कमी हो गई है हमारे शरीर में? लगातार थकान और कमजोरी होना, लेकिन इसके साथ कुछ और भी संकेत होंगे, क्योंकि थकान और कमजोरी तो कई मामलों में होती है। हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होना, कई बार आपको लगेगा कि आपका हाथ सो गया है, पैर सो गया है, झंझनाहट जैसा महसूस होगा, है ना? अगर ये होता है B12 की कमी है। चलने में संतुलन की समस्या, बैलेंस बनाने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी, आपकी पकड़ कमजोर हो जाना, है ना? आपको फील होगा कि अब उतनी ताकत नहीं रही शरीर में, जबकि मैं खाता पीता भी ठीक हूं, ऐसा फील होगा आपको। चक्कर भी कभी कभी आ सकते हैं, अचानक आप उठकर खड़े हो या बैठे हो तब अचानक आपको चक्कर आ सकता है। चलने में थोड़ी सी दूर चले, थोड़ा सा ही जीना चढ़ा, सांस फूल सकती है। दिल की धड़कन बहुत तेज कभी कभी महसूस हो सकती है। बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तब आपको अचानक से एकदम तेज दिल धड़कता हुआ महसूस हो सकता है। आपकी त्वचा पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जीभ में भी दर्द, तालीमा वैया हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, सबसे आसान उदाहरण आपको बताता हूं, याददाश्त। अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें भूल रहे हैं, ज्यादा भूल रहे हैं, लोगों के या जगहों के नाम भूल रहे हैं, तब याद रखिए, ध्यान रखने में परेशानी, किसी की बात को ध्यान से सुनने में परेशानी, अभी एक ही मिनट पहले कोई बात हुई और आप उसे भूल गए, आप जगह का नाम भूल गए, आप बात करते करते भूल गए, यकीन मानिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ये लक्षण है विटामिन B12 के बारे में। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि इन सभी लक्षणों से कभी ना कभी मैं भी दो चार हुआ था, तब मुझे भी पता चला कि ये B12 की कमी है। दोस्तों अगर याददाश्त में कमजोरी आ गई है, मतलब आपको याद नहीं रहता, 2 मिनट 5 मिनट पहली बात भूल गए, कमरे में घुसे किसी चीज को लेने के लिए और भूल गए क्यों आए थे, किसी से बात करते करते कोई बात भूल गए और बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रही है, लगातार कमजोरी होना, हाथ में, हाथ की किसी भी उंगली में, पैर में झंझनाहट, चींटियां चलने जैसा फील होना, चक्कर आना, उठकर अचानक से बैठे या बैठकर अचानक से उठे तब भी चक्कर आ जाना, और एकदम से आपको झंझनाहट महसूस होना पूरे शरीर में, ये लक्षण है विटामिन B12 की कमी के। कुछ लोगों के मूड में भी बदलाव आते हैं दोस्तों, भ्रम और सोचने समझने में भी परेशानी हो सकती है, भ्रमित हो जाते हैं कई बार। विटामिन B12 दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए ये सारी समस्याएं होती है। अगर हाथ पैर में लगातार झंझनाहट सुन्नपन हो रहा है तो इसे सिर्फ कमजोरी समझ के नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक B12 की कमी रहने पर हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये समस्याएं कई बार ऐसी बढ़ सकती है कि कभी ठीक भी ना हो पाए। दिमाग के अंदर अगर ये खराबी ज्यादा आ गई तो शायद फिर कभी इसे ठीक भी ना किया जा सके, इसीलिए इन लक्षणों के आधार पर तुरंत के तुरंत अपने B12 का इलाज करवाइए। लेकिन B12 की कमी कितने दिन में हो जाती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कि ये तो लक्षण है जो हमको नजर आ रहे हैं। B12 ऐसा कोई विटामिन नहीं जिसकी कमी 2-4 दिन में नजर आनी शुरू हो जाए या 2-4 दिन में ही कमी आ गई है, तुरंत लक्षण दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं होता। विटामिन B12 काफी बड़ा भंडार जमा करके रखता है अपने शरीर में, जो हमारे शरीर में ना भंडार होता है, लेकिन ये कमी नजर आने हो गई है शुरू, लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तब समझ लो अंदर मामला खत्म हो चुका है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को आज B12 कम मिला तो जरूरी नहीं कि कल उसके हाथ पैर सुन हो गए होंगे या चक्कर आना शुरू हो जाएगा। B12 डेफिशिएंसी के लक्षण कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, यानी आज की परेशानी का कारण कई बार लंबे समय तक चल रही कमी हो सकती है।

जय हिंद वंदे मातरम, आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। अगर हाथ पैरों में लगातार झंझनाहट, सुनपन है, चक्कर आना है, याददाश्त कमजोर हो रही है तो समझ लीजिए B12 की कमी हो चुकी है। और ये कोई दो चार दिन में नहीं होती, हमारा शरीर B12 का भंडार हमेशा जमा करके रखता है। लेकिन अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है या कोई और समस्या है तो ऐसे में B12 लगातार घटता चला जाता है और इसके लक्षण ही सालों साल बाद वापस आते हैं। और B12 की लगातार डेफिशिएंसी के कारण आपके दिमाग में कई प्रकार की कमियां आ सकती हैं, जैसे नींद ना आना, याददाश्त का कमजोर होना, आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है डॉक्टर्स के अनुसार। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ ये सोचकर कि मैं तो खाना खाता हूँ, B12 की कमी भला कैसे हो सकती है, समस्या को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब सवाल है कौन सी जांच करानी है। अगर आपको लगता है लगातार थकान, कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट, जीभ में समस्या, याददाश्त या संतुलन से जुड़ी कोई परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर डॉक्टर के अनुसार जांच करवाइए। आमतौर पर शुरुआत में डॉक्टर CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट और सरनम विटामिन B12 की जांच करते हैं और CBC से हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं की स्थिति का पता चलता है। B12 डिफिशेंसी में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से ज्यादा बड़ी नजर आती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको इस लक्षण को या B12 की कमी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। डॉक्टर जो टेस्ट बोले वो करवाइए। पता चलने पर, कंफर्म होने पर आपको सबसे बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आपको खाना क्या है। एक तो डॉक्टर जो दवाइयां बताएंगे वो आप खाइएगा जरूर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो B12 के अच्छे प्राकृतिक स्रोत होते हैं मछली, मांस और अंडे। इसके अलावा दूध और डेयरी उत्पादों में भी B12 होता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो B12 फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, यानी जिन खाद्य पदार्थों में B12 मिलाया गया हो उनका उपयोग कीजिए। ऐसे खाद्य पदार्थों के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल जरूर देखें और पढ़ें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ भोजन से हर व्यक्ति की B12 डेफिशिएंसी ठीक हो जाए ये जरूरी नहीं। अगर कमी का कारण एब्जॉर्प्शन की समस्या है या कमी काफी ज्यादा है तो डॉक्टर सप्लीमेंट या इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। और अब दवा की बात करते हैं। बाजार में B12 की कई टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं, लेकिन मैं आपको यहां रेडियो पर बैठकर किसी दवा के बारे में नहीं बता सकता, इंजेक्शन के बारे में नहीं बता सकता। मैं आपसे बस ये बता सकता हूं कि अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बताएंगे कि आपके शरीर में कितनी कमी है और आपको किन दवाइयों, इंजेक्शनों, गोलियों या कैप्सूल की जरूरत है या सिर्फ ये खाने पीने से ठीक हो सकता है। किस लेवल का B12 कम है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको याददाश्त में लगातार कमजोरी, चक्कर आना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, लगातार कमजोरी होना, नींद की बहुत ज्यादा कमी होना, ये लक्षण है B12 की कमी के। और B12 लगातार कम होता चला गया तो इससे आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ये भयानक हो सकता है। दोस्तों, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये कोई मामूली खून की कमी नहीं होती, ये बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। सिर्फ B12 की कमी समझकर खुद से फोलिक एसिड शुरू मत कीजिएगा। डॉक्टर के बताए सुझाव पर ही दवाइयां और खाना पीना शुरू कीजिएगा। किन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोग जो लंबे समय से वेजिटेरियन या वीगन डाइट लेते हैं और B12 का पर्याप्त सोर्स उनके पास नहीं है, बुजुर्ग लोग जिन्हें पेट और आंत की समस्या रहती है, नौजवान लोग, लड़के लड़कियां भी, महिला पुरुष भी जिनका पेट कभी ठीक नहीं रहता, हर मामले में उनके अंदर भी B12 की कमी होगी क्योंकि आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है।

सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है और आज के कार्यक्रम में B12 की कमी के बारे में हमने बात की है। दोस्तों, मैंने आपको लक्षण बताए, उदाहरण बताए, शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके परिवार में भी किसी को ऐसा हो रहा है तो याद रखिये, ये कोई मामूली बीमारी नहीं, ये B12 की कमी है। हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चक्कर आना, थकान होना, जिनका पेट खराब रहता है उनके अंदर भी ये कमी होती है और दो दिन में पकड़ में आ जाए ऐसा भी नहीं होता है, सालों साल बाद तो लक्षण सामने आते हैं। इसीलिए आपको सप्लीमेंट, दवाइयां, कैप्सूल, गोली लेने पड़ सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, आप अंडा, मछली इत्यादि खा सकते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तब डॉक्टर के बताए अनुसार आप उन चीजों को जरूर खाएं, दवाइयां, गोलियां, कैप्सूल या इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं होता, स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर के संकेतों को समय से समझते रहना। तो आज का संदेश बिल्कुल साफ है, संतुलित भोजन लीजिए, लक्षणों को नजरअंदाज मत कीजिए, जरूरत हो तो CBC और वाइटामिन B12 जैसी जांच डॉक्टर की सलाह पर कराइए। बॉर्डरलाइन या संदिग्ध स्थिति में आगे की जांच डॉक्टर तय करेंगे कि भाई पकड़ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर कुछ और भी जांच आपको बता सकते हैं। और दवा या इंजेक्शन खुद से नहीं लेना, डॉक्टर के अनुसार ही लेना है। थकान को हमेशा किस्मत मत मानिए कि मैं तो हमेशा थका हुआ ही रहता हूं, किस्मत ही ऐसी हो गई है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। झंझनाहट को हमेशा उम्र का असर मत मानिएगा, मेरा तो हाथ पैर सो ही जाता है, उठता हूं बैठता हूं तो चक्कर आ ही जाता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल या कॉमन नहीं है दोस्तों। और कमजोरी को हमेशा काम का तनाव या डिप्रेशन या स्ट्रेस मत समझिए, कभी कभी शरीर बहुत धीरे से हमें एक संदेश दे रहा है, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा आपको सोचना चाहिए। उस संदेश को सुनिए, अपने शरीर की बात को समझिए, समय पर जांच कराइए और स्वस्थ रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका अपना वास्तु कृष्णा, चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, जागरूकता बीमारी से पहले की सुरक्षा है और समय पर जांच स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समझदारी। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये थी खास प्रस्तुति स्मार्ट एनजीओ की, सेहत से ही लाभ कई।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के

0: नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किशोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: सेहत

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है? और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए, और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है। और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ। कई मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर मतलब आप समझे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार है पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुबह भारती, आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम, खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाइयां आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया

0: आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के बारे में। हर साल 1 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में बुजुर्गों के योगदान का सम्मान करने, उनके जीवन से जुड़ी चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्पित होता है। इसके बारे में बातें हमारी आगे चलती रहेंगी। आपको जाना कहीं नहीं है, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। बातें करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के बारे में। इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 सितंबर साल 1990 को एक प्रस्ताव पारित करके 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका पहला आयोजन 1 अक्टूबर साल 1991 को किया गया था। इस दिन को मनाने के उद्देश्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपने ट्यून इन कर रखा है और मैं हूं यहां पर आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को लेकर। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है बुजुर्गों के अधिकार, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य और कल्याण, बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देना। तीसरा उद्देश्य सामाजिक भागीदारी, बुजुर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना और उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना। इसके बाद अगला उद्देश्य जो है वो है पीढ़ीगत एकता, विभिन्न पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। बातें चलती रहेंगी, आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1: देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना अपनदास आर शे पंकज। बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के बारे में। इस दिन दुनिया भर में सरकारें, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और समुदाय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए समारोह, स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर, सेमिनार और कार्यशालाएं जिनमें उम्र बढ़ने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें बुजुर्ग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। ये दिवस समाज को ये याद दिलाता है कि बुजुर्ग हमारे ज्ञान और अनुभव का भंडार है और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भारत में भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाता है और बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान करता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। और चलिए अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है कि आलोचनाओं से डरने वाले कभी सफल नहीं बन सकते। सीधा सा, सिंपल सा और समझने वाला मतलब है। आलोचनाएं जो आपके बारे में होती हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग ही आपकी करते हैं, और उन पर आप जब ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आपको ना एक निगेटिव वाइब आनी शुरू हो जाती है। बट उन पर ध्यान न देकर अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अच्छे से मेहनत करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सो इसलिए कभी भी आलोचनाओं पर ध्यान ना दें और हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। तो भाई ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल चाहिए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जीआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदा सार शे पंकज, और आपकी फरमाइशों का ख्याल रखना हमारा काम है। आप अपनी फरमाइशें लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी अगला गीत, अगला सॉन्ग जो हम सुनने जा रहे हैं, ये किसी की फरमाइश पर है और इनका नाम है कृतिका शर्मा, जो हमें इस वक्त सुन रही हैं गुजरात से ऐप के माध्यम से। आइए इनकी रिक्वेस्ट पर प्ले करते हैं इस गीत को, इस गाने को। गाने का नाम है ओ मेरे दिल के चैन, सुनते हैं आइए।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल

0: थर्ड रोड की ठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज एंड बॉस। देखिए यहाँ पर आपसे ढेर सारी बातें शाते तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ अभी टाइम है हमारे फिल्मी क्विज का। तो चलिए फिल्मी क्विज आपसे करते हैं। आपको आज के फिल्मी क्विज में मुझे बताना है, सड़क टू जो मूवी है बॉलीवुड की, इस मूवी में आलिया भट्ट भी है, तो आलिया भट्ट के कैरेक्टर का क्या नाम होता है? इतना सा बस आपको मुझे बताना है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास तो जवाब है, हम जवाब दे सकते हैं, तो आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको इंस्टा पर भी मिल जाते हैं और फेसबुक यानी कि मेटा पर भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको जवाब सबसे पहले देना है और करेक्ट देना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे रेडियो की ओर से। तो सरप्राइज गिफ्ट चाहिए ना, सो देर मत कीजिए और जल्दी से अपना जवाब भेज दीजिए हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर। वेट कर रहा हूं आपके जवाब का अपकमिंग गाने के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। और जी अभी कुछ वक्त पहले आपसे मैंने किया था हमारा आज का फिल्मी क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था सड़क टू जो मूवी है बॉलीवुड की, इस मूवी में आलिया भट्ट भी हैं तो उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है इस मूवी में, उतना सा बस आपको मुझे बताना था। और कंडीशन ये थी मेरी कि जवाब आपको सबसे पहले देना था और करेक्ट देना था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलने वाला था सरप्राइज गिफ्ट, था वैसे अभी मिलने जा रहा है तपेश को। तो भाई तपेश का जवाब सबसे पहले मेरे पास आया है और जवाब इनका करेक्ट भी है। इन्होंने मुझे बताया है कि सड़क टू में आलिया भट्ट के कैरेक्टर का नाम होता है आर्या देसाई। भाई आपका जवाब जैसे मैंने कह दिया कि सही है और सबसे पहले भी आया है, इसलिए आपको मिल रहा है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी के जो मेरे दोस्त हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो ऐसे ही सुनते रहिए, और किसी ट्रैक की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। और हाँ, कोई सजेशन देना चाहते हैं शो से रिलेटेड तो सजेशन भी आप दे सकते हैं, उसके लिए भी आपका स्वागत है। फिलहाल मैं खुद को रोकता हूँ और अभी के लिए प्ले करता हूँ अपकमिंग गाना।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज, और मैं यहां पर होता हूं, आपसे बातें करता हूं। एंड आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव अपना हम तक भेजना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, बाहर के मौसम का हाल बताना चाहते हैं, कोई अपडेट है, कोई अच्छा फैक्ट है, कोई नॉलेज वाली बात है, या कुछ ऐसी बात है जो सभी तक पहुँचनी चाहिए, कोई संदेश है, तो वो अगर आप हम तक पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, आप हमारे दोस्त हैं, आपके लिए हम यहाँ पर आते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपके मन में भी ख्याल आता होगा, कोई अच्छी बात आती होगी, कोई अच्छा नॉलेज वाला फैक्ट आता होगा, तो उसे साझा किया कीजिए। साझा करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। फिलहाल आपको जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड

0: और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज, और लाइव आपसे मेरी बातें हो रही हैं। एंड समय की बात करें तो ठीक 7:53 हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और शो चल रहा है गूंज। एक चर्चा आज चारों तरफ है, मतलब वाह वाही हो रही है, और

बहुत लोग मतलब तारीफ कर रहे हैं, इतना अच्छा काम हुआ है। एंड ये बातें हो रही हैं कैप्टन स्मिथ मच्छार के बारे में, जो एक फ्लाइट को लेकर जा रहे थे। एंड बीच फ्लाइट में ही क्या होता है, उनके को पायलट जो होते हैं वो अचानक उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी हद तक घायल हो जाते हैं। एंड मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर में ही ना जो फ्लाइट उड़ रही होती है वो 14,000 फिट नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो उसको संभाल लेते हैं, कॉकपिट का दरवाज़ा खोल देते हैं। तभी क्रू मेंबर्स आ जाते हैं, कुछ यात्री आ जाते हैं और डिटेन कर लेते हैं उस को पायलट को जिसने हमला किया था। तो ये आज चर्चाओं में काफ़ी रहा। एंड सैल्यूट है यार ऐसे मतलब कैप्टन को, और इतने जख्मी हो गए थे वो, इसके बाद भी उन्होंने जो है फ्लाइट को संभाला। और चर्चा चारों तरफ यही है कि 9:11 होने से बच गया, तकरीबन 174 यात्री थे। कांट यू इमेजिन कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया। एंड बड़ा ही मतलब चारों तरफ ये चर्चाओं का विषय रहा आज। आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर तो ज़रूर कह सकते हैं, बता सकते हैं, कहने बताने के लिए हमारे सोशल हैंडल्स पर भी आ सकते हैं। और एक ना जिद होनी चाहिए अपने अंदर किसी भी काम को करने के लिए कि ये करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और मुश्किल से जो बचा कर ले आए वही सच में रियल हीरो होता है। तो ज़िद दिल तो वाकई में होना चाहिए। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, बताइए। फिलहाल जाना कहीं नहीं है, जिद दिल प्ले हो चुका है, सुनते रहिए आज़ाद इन रेडियो 90.8।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ।

0: प्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

श्यामत, अभी अभी आपने सुना अंकित तिवारी और तारा सुतारा की वॉइस में ये ट्रैक था। बाकी मैं हूं आपके साथ, आपका अपना बिंदास सारशे पंकज, लाइव आपसे बातें कर रहा हूं। समय की बात करूं तो 8:19 हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। एंड यस, आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के माध्यम से तो आप हमें सुनते हैं, बट हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सुन रहे हैं हमें या हमारी ऐप के माध्यम से, ये भी बताते रहा कीजिए। बाकी जो है ट्रैफिक अपडेट्स की थोड़ी सी बात कर लें तो मलियाना फ्लाईओवर के पास आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, और इसी के साथ ही साथ आगे आप सीधा NH 58 होते हुए जा रहे हैं तो दोराला के पास भी आपको ट्रैफिक देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी और कहीं की ट्रैफिक अपडेट अगर आपके पास है तो वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी ट्रैक की फरमाइश करना चाहें, किसी ट्रैक की रिक्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। 9639012111 मेरे स्टूडियो का नंबर होता है, कॉल मैसेज कर सकते हैं। सोशल हैंडल्स पर भी आप आ सकते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। फिलहाल जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। अभी अगला ट्रैक सुनिए।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से

से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।